सदासदमन निरंकार कार्यहतरे तंदे पानी तुते हुतेस्के मुत्पलिति कपरा होए देसा बुन्नाए ओदोए भार्य मापप के संग ओतो पेनावे के रंग हुनी पापिया करनाए कर कर करना लगन जाओ आपे पीछा पे विकाओ नानक हुकमिया वो जाओ धीर दात्या दातान जे को पावे तिर के मन सुनिए मन मत दबाओ अंतर जा तिर मन्ना सगुन तेरे में नाए कोए गुन गुन की ते वगना होए स्वासाद पनी वर्माओ सत सुवन सदा मन चाओ पवन सुवेल वत

पद्य के एकाहन के बाद से सुतार कहाँ करते वा सुनकर एक दात लेखा हुए तो लिखिए लेखे हुए विनाश नानक वादा आकिए आपे जाने आप सलाए सलाए तिसर न पाया नजरिया वे पावे समन न जानिए समान सा सुल्तान केरी सती मलदान कीरी टुल न हो बनीज तिस्मनो न विसरे अंतन सिफ्ति के न अंत अंतन करने दे न अंत अंतन जापे क्या मन मंत अंतन जापे की ताक

0: वेद पद पुराण आके परे करे बदियान आके भर में आके इन आके गोबी ते गोबिंद आके ईश्वर के सिद्ध आके केते कीते बुद्ध आके धर्म के देव आके सरम जन से केते आके अकन पाए केते के रुत जाए केते कीते होर करे दागन सके के इके जेवत भावे तिरत होए नानक जान सच सोए जे को आखे बोल बिदार तल क्या सिर गवार गवार सोदर के हा सोदर के हा जित सरत समाने बाजे नारन के संकर के ते गावन हारे गावे किन तन पैं संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे छिक पलिक जान लिक लिक धर्म विचारे गावे ईश्वर वर्मा देवी सोन सदा सवारे गावे ईदिता संदे ते देवतिया करनाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावे सद विचारे गावे जति सति संतोखी गावे वीर करारे गावन परन परन राखी सचु जु वेदनाले गावे मोहन यमन मोहन सूर मच प्याले गावे रतानु परि तेरे सत्य रत्नाले गावे जोद महावन सूर गावे कर विचारे गावे कंद मंदा वरवन सकर के तारे सेतु नु गावे जोत पावन रित तेरे वगर साले गुर के ते गावन से मिचि न आवन नानक या विचारे सोई सोई सदा सुसाई सच सचि नाई देवी होसी जय रजासी रचन चिंग रजाई रंगी रंगी वती कर कर जिनसी माया की मुकाई कर कर वे के किताब न जिव जिसके बरियाए जो जिस भावे सोई कर सी हुकम न कर जाए सो पति साव सह पति साए नन राम रजाए उन्न संतोष करम पति
1: भूतम गौर कहे जगदंदा प्रतीत आए पंति सगर जमंति मंजित जग जीत इस से आदेश अदनी अनादन हर जग एक वेश आप नाथ नाथी सब जाके रिसे अवरसादम

का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख देख फतेह बिर की पैज पंथ की जी

हर की सेवा सफल है, गुरमुख भावे थाए। जिस हर भावे जिस गुर मिले, सो हर नाम ध्याए।